0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत, डाबर शिलाजीत. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड मॉर्निंग, 7:05।

0: या जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक,
2: गुड मॉर्निंग, 7:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: insurancemarket.ae.
1: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. देख

0: आंखों से तूने 2.0 फ्रॉम भाई तेरा स्टार है स्टार। राघव जुगाल की ये फिल्म अब सफरिंग अंडर द धुरंधर फिनोमेना।
1: फ्लाइट्स बुक्ड, बैग्स पैक्ड, ब्रेन ऑलरेडी ऑन हॉलिडे, फास्ट क्लेम्स, फेयर प्राइसेस, रियल प्रोटेक्शन। फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस एंड मोर, insurancemarket.ae।
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: कहाँ राघव जुयाल की भाई तेरा स्टार है, कहाँ धुरंधर? What is the comparison? Why did I mention धुरंधर? यार, there is a phenomena called धुरंधर, not just a movie, because you know the first casualty I'd say of the धुरंधर phenomena is भाई तेरा स्टार है, because now the expectation is set really high, ना कि हर एक फिल्म को 100 करोड़ जब तक नहीं बना ली बिजनेस तब तक मजा नहीं होता, खाना हजम नहीं होता। बट या दिस फिल्म भाई तेरा स्टार इज स्ट्रगलिंग टू गेट टू 1 करोड़ एज वेल, सो इट्स नॉट रियली डूइंग वेल। बट हाउ आर यू डूइंग ऑन दिस थर्सडे मॉर्निंग 6th of August? आप जानते हैं वॉट वी डू एवरी डे इन द मॉर्निंग, वी डू अन अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट आर। द फर्स्ट आवर ऑफ द शो इज योर आर, यू कुड बिकम आर अर्ली मॉर्निंग इन्फ्लुएंसर्स, यानी तो म्हणजे यू कुड इन्फ्लुएंस आर प्ले लिस्ट। वॉट इज दैट वन सॉन्ग दैट यू रियली वॉन्ट टू लिसन टू अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे बताओ मेरे भाई, मैं आपको आपके लिए प्ले करने वाला हूँ। आपके लिए इट कुड बी समवन स्पेशल इन योर लाइफ, यू कैन रिक्वेस्ट। द नंबर इज 0543091062, दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर 0543091062। Here's Jazzy B with Dil Lutia 2. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
0: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
6: Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
7: Kehte hain na, try and try till you succeed. Haar na maan mere sher, mazboot ban mazboot. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो लेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, नाउ ऑन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: मॉर्निंग 7:21 ऑन द क्लॉक, द वेदर इज बिग टॉकिंग पॉइंट ऑफ कोर्स अक्रॉस द यूएई। आजकल वी टच 51.2 डिग्रीज सेल्सियस, यस्टरडे इट वाज द हाईएस्ट रिकॉर्डेड दिस समर, 36 डिग्रीज सेल्सियस राइट नाउ, एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 44 डिग्रीज टुडे एट 56%, हाईज ऑफ 41, लोज ऑफ 30 डिग्रीज सेल्सियस राइट नाउ।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: और आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में ताकत की कमी होना और कमजोरी फील करना इज एब्सोल्युटली कॉमन. स्ट्रेस, फास्ट फूड एंड फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल कैन मेक यू फील लो, बट यू डोंट हैव टू हैव. डाबर शिलाजीत द कैप्सूल्स, दे हेल्प इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड पावर. शेर की तरह बने मजबूत, हर दिन की शुरुआत करें विद डाबर शिलाजीत. मिटाए कमजोरी, बढ़ाए रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स दैट मेक यू फील स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट. आपकी जीत, डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज, अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
2: देख 106.2

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: भाई,
1: प्रेम भाई,
0: अरे गिरा तो
1: प्रेम भाई,
2: अबे हटा सावन की खुजा घटा खा खुजा पत्ती खुजा टकले टकले खा खुजा पत्ती खुजा
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 8:10
1: 6.2 The Beat of Bollywood

0: From a donkey that is loot-put gaya, of course, the correct answer is Shah Rukh Khan.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: And thank you so much to Pritesh, to Azhar, to Shahji, all those people who message in lots of Shah Rukh Khan fans. Hame to bahana chahiye hota hai Shah Rukh Khan ki baat karne ka. Aaj ka bahana kya hai? That he is the most valuable Indian celebrity brand endorsements ki jahan tak baat hai. 177 se bhi zyada million US dollars ki unki brand worth hai. He's up to number one from number three. Top five ki hum baat karein. Number five pe MS Dhoni the. Number six and seven pe there are ladies. Number six pe there is Alia Bhatt. And number seven pe there is Deepika Padukone. Adnan Sami with Gela Gela coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid.
1: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
4: नमस्ते।
5: ओला।
4: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो? नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
1: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. The Big Mix, weekdays 1 to 5 p.m. only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
7: Hey, jaldi
1: aa,
7: tera khada na, chal hata. Arey jaldi aa, chinda.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
0: It is 8:28 on the clock. Let's take a look, sabse pehle, at the capital, Abu Dhabi. You'll find a bit of congestion, Musaffa Industrial, but everything else seems to be quite smooth flowing. Chalte hain Dubai Sharjah ki or, 311, E11 heading south, going towards Dubai from Sharjah as usual. 5 to 7 minutes extra you'll end up spending. Then there's 44 and 311 ka junction at JVT. In both directions, you'll find a bit of congestion building up. 311 पर there's another pocket of traffic also going towards DSO Dubai Silicon Oasis. यहाँ पर मिलेगी आपको 3 से 4 मिनट की देर.
1: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
8: मैं गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम. शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं.
1: Big 106.2.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: दिस समर दिस बिग कैश विन्स विद बिग टिकट,
3: अ गारंटीड 15 मिलियन दिरहम ग्रैंड प्राइज अवे,
2: प्लस विद बिग स्पिन द चांस टू विन अप टू 1 मिलियन दिरहम्स
3: एंड 5 कंसोलेशन प्राइजेस ऑफ 100,000 दिरहम ईच।
2: डोंट फॉरगेट द 4 वीकली कैश प्राइजेस ऑफ 25,000 दिरहम्स।
3: बाय नाउ एट bigticket.ae।
4: दिस इज एन 18 प्लस गेम, प्ले रिस्पांसिबली, TNCs अप्लाई।
5: Homes R Us big deals are here. Save up to 90% off on furniture and home accessories. Best deals, biggest discounts. Hurry, only while stocks last. Exclusively at Homes R Us, Zabeel Furniture Mall, Ood Mehta.
6: Great news, Ajman! A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward, plus exclusive member discounts. Safir Market. More choices, more savings, more reasons to shop.
7: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.
1: Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: रूप विधि और रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो This is Big 106.2.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: I've got Shehnaz with me on the phone line. Good morning, Shehnaz. How are you doing?
2: I'm good, Sid. Good morning.
0: अभी ऑफिस में पहुंची हैं. 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था. क्या था सीन?
2: Yeah, something like that.
0: Let me ask you a very difficult question, okay? Because I've come across this article, which I find very, very interesting. Now, this article is from the point of view of women. Okay, that which are the worst first dates? कहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए on a first date? Okay, let me see if you agree with them. The first place on this list is a movie theater. Yes or no?
2: I agree.
0: You agree? No movie theater? Why?
2: First date, no movie.
0: Okay, the second entry on this list is a family gathering. Yes or no?
2: That's not a first date.
0: लेकिन अगर कोई ले गया आपको फर्स्ट डेट पे अपने परिवार से मिलाने के लिए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यस और नो?
2: इफ यस और नो, नो.
0: नो, ओके. अनदर एंट्री ऑन दिस लिस्ट इज अ लॉन्ग ड्राइव. व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ लॉन्ग ड्राइव फॉर अ फर्स्ट डेट?
2: या लॉन्ग ड्राइव इज गुड.
0: लॉन्ग ड्राइव इज गुड.
2: आई वुड प्रेफर लॉन्ग ड्राइव.
0: फाइनली शहनाज़ सेड समथिंग दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स दिस लिस्ट. देन देयर इज आल्सो जिम. वुड यू गो टू द जिम ऑन अ फर्स्ट डेट? 50-50. Is there a really weird place that you've gone for a first date, Shehnaz? Tell me, what is the most weird place? I'm expecting you to say something like a cruise or something. Yeah, since you're in shipping.
2: No, I don't have any such experience, I think.
0: लेकिन मतलब आप shipping वगैरह में होते हो तो आपको मिलता है कुछ free cruise, मतलब समुद्र में जाने का मौका या कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं है? Perks of the trade?
2: I wish.
0: नहीं होता कुछ भी ऐसा? क्या यार? I think I've given an idea to all the HR people working in shipping right now, huh? At least कुछ तो ऐसा होना चाहिए. If you're working in airline, for example, then you get free airline tickets. If you're working in shipping, you should get free shipping.
2: Yeah, you may get to roam around in the container then. If you ask for.
0: That's a good one, yeah. That's a good one. कहीं आप HR में काम तो नहीं करती हैं, शहनाज जी?
2: No.
0: बड़ी हाजिर जवाब है. This is actually the answer that an HR person would give you. चलो शहनाज, ये तो हो गई time pass की बात. लेकिन last time मैंने आपको एक scene सुनाया था, and that was a scene in which Sanjay Dutt is saying के रोशोबा या क्या नाम था उनका नाम के मुझे नहीं. चलो सुनते हैं एक बार फिर. People who just tuned in, this is what the scene was.
3: रोशोबा मुझे दुनिया का सबसे बुरा आदमी बनना है, सबसे बुरा.
0: इसके बाद रोशिबा क्या कहते हैं आपको याद है?
2: Honestly, I don't remember.
0: सुनते हैं, आपको मजा आ जाएगा. आपको मजा आ जाएगा. It is going to make your day. Okay, are you ready for this? When Sanjay Dutt says to रोशिबा कि मुझे दुनिया का सबसे बुरा आदमी बनना है, सबसे बुरा, तो रोशिबा क्या बोलते हैं पता है? ये बोलते
4: हैं, जानता हूं, लेकिन राम ने तुम्हारी माँ को धतूरा खिला के उसे जज्बाती बना दिया है.
0: My God, the 90s. 1993 में फिल्म रिलीज हुई. फिल्म का नाम क्या है?
2: खलनायक.
0: Absolutely correct. Congratulations, Shehnaz. You just won two open movie tickets. Go and enjoy. अब कंटेनर में बैठ के जाना है या जैसे भी जाना है, ये आपकी मर्जी है. लेकिन you can go and watch any movie of your choice at a time of your choosing. So enjoy yourself, yeah.
2: Thank you so much.
0: Take care. That is Shehnaz, हमारे आज की विनर है. Don't forget, रोज सुबह ये मौका आपके पास to flex a bit of your Bollywood muscle and win two open movie tickets in the big Bollywood quiz.

0: 96.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो? नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
7: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
8: दिस समर दिस बिग कैश विन्स विद बिग टिकेट्स।
9: अ गारंटीड 15 मिलियन दिरहम ग्रैंड प्राइज अवे।
8: प्लस विद बिग स्पिन द चांस टू विन अप टू 1 मिलियन दिरहम्स
9: एंड 5 कंसोलेशन प्राइजेस ऑफ 100,000 दिरहम ईच।
8: डोंट फॉरगेट द 4 weekly cash prizes of 25,000 dirhams.
9: Buy now at bigticket.ae.
10: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली
12: है। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
13: Good morning. It is 9:18 on the clock on this Thursday ki subah and everybody's talking about the weather. Aaj काफी ज्यादा चांसेस हैं अलेन में, रसल खेमा में बारिश होने के। दुबई में इज गोन गो अप टू 45 डिग्री सेल्सियस। राइट नाउ द टेम्परेचर इज अराउंड 38 डिग्रीज। ह्यूमिडिटी एट 50%, हाईज ऑफ 40, लोज ऑफ 34।
0: अलराज ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 Big 106.2 Song of the Hour brought to you by insurancemarket.ae.

0: हॉलीवुड।
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नो स्क्रोलिंग, विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
0: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
6: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: What is going on at Sheikh Zayed Road? Achanak, it has become very, very congested here. Bahut zyada traffic dikha raha hai. All the way from Dubai Creek till Trade Center Roundabout and Satwa tak aapko traffic milne wale wahan par. And then in the opposite direction as well. Jaise aap Museum of the Future wale area se nikal ke Trade Center Roundabout ki taraf jayenge, heading north also you'll find a bit of congestion. But the main thing is heading south. There's a 19-minute delay on Sheikh Zayed Road, heading towards and a bit away from Trade Center Roundabout as well. In case you have more information about this, give me a call. Let me know, 800-1062.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 10:07।
1: Bollywood.

0: लुट ले गया, ये लोग कह रहे हैं ऑन शेख जायद रोड. व्हाट इज हैपनिंग हेडिंग साउथ ट्रेड सेंटर की तरफ जाता हुआ, इन केस यू नो प्लीज गिव मी अ कॉल. वेरी अनयूजुअल ट्रैफिक, अभी भी 22 मिनट की देर दिखा रहा है वहां पर.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद जेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: इट्स 6th ऑगस्ट 2026 चल रहा है, व्हिच मींस अराउंड 20 इयर्स सिंस द लास्ट टाइम वी सॉ सिद्धार्थ इन अ बॉलीवुड मूवी. हां, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो दी अदर रंग दे बसंती वॉज द लास्ट टाइम वी सॉ हिम. एंड ही इज डूइंग दिस फिल्म कॉल्ड ऑपरेशन सफेद सागर, जिसके बारे में काफ़ी यू नो दिस क्यूरियोसिटी. नेटफ्लिक्स की ये फिल्म है. एंड यू नो ही इज काइंड ऑफ नोन टू स्पीक हिज माइंड, ही इज नॉट वांट टू होल्ड बैक पंचेज. तो उनसे जब पूछा गया कि यार 20 साल का ये गैप के बाद आप हिंदी फिल्म क्यों कर रहे हो, डू यू नॉट लाइक टू डू हिंदी फिल्म, से नहीं नहीं यार मैं तभी फिल्म करूंगा जब कोई मेरे को ऑफर करेगा ना. सो ही यू हार्डली फाइंड अ बॉलीवुड एक्टर सेइंग दैट, दे यूजुअली से नहीं ऑफर तो मुझे बहुत आ रहे हैं, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ. नहीं मेरे को अच्छे ऑफर आ ही नहीं रहे थे फॉर सम रीजन. ये अच्छा ऑफर आया तो मैंने सोचा कि मैं कर लूँ. सो या देयर इज वन फिल्म दैट यू मस्ट लुक फॉरवर्ड टू, नेटफ्लिक्स का ऑपरेशन सफेद.

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Great news, Ajman. A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward, plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop. Listen to her every day.
2: Mugambo, खुश हुआ.
3: Advice एक ऐसी चीज है जितनी भी अच्छी हो लोग free की चीजों को appreciate नहीं करते हैं. बताओ मुझे office में किसने आपको नाराज किया है?
4: सबने.
3: एक ही दिन में सबने? अरे रे रे रे, कोई बात नहीं, तब घर जाके गुस्सा मत निकालना. फिलहाल विल प्ले द 5 second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. इस वक्त अगर तीन चीजें आप अपने बॉस को बोल सकते हैं तो वो क्या बोलते हिदायत?
4: एक ही चीज.
3: Three things that you love doing on weekends.
4: Weekend movie, friends. And having dinner.
3: So you don't have dinner during weekdays. You wait for
4: dinner
3: weekends.
4: With friends. With friends.
3: Yeah. If for a day you become the boss, so three changes you'll bring to your workplace.
4: I will terminate all the employees. And I will give the new opening. And I will be the one.
3: Oh God!
0: 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
5: Hey, jaldi hata tera khada na. Chal hata. Arey jaldi hata.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: It is 10:24 and still very, very busy. You know, 33 minutes ka delay on Sheikh Zayed Road. And this is as you get out of Dubai Creek, all the way from Dubai Creek till even beyond Trade Center roundabout till almost Museum of the Future wala. जो एरिया है वहां तक आपको ये मिलेगा 33 मिनट्स का डिले ऑन शेख जायद रोड. अ बिट ऑफ कंजेशन आल्सो हेडिंग नॉर्थ अराउंड ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट एज वेल एट शेख जायद रोड. चलते हैं बिट नॉर्थ 311 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. यू विल फाइंड 7 से 8 मिनट की देर. एंड देन देयर इज आल्सो बेरूत स्ट्रीट, डमास्कस स्ट्रीट अ बिट बिजी. S112 पर इंडस्ट्रियल एरिया 6 में इन शारजा यू विल फाइंड प्रेडिक्टेबल ट्रैफिक. द गुड न्यूज इज 611 पर देयर इज नो कंजेशन. एंड 44 आल्सो लुक्स प्रेटी clear at the usual hotspot of D3 going towards Business Bay.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

का दिल तेरा ले कहीं तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रियान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2 The Beat of Bollywood.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग मिक्स, वीकडेज 1 to 5 PM, ओनली ऑन बिग 106.2, ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae. Big 106.2. That's My Song by E-And.
2: Eid Yunge King Khan. Yo, Honey Singer.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हज़ार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: 2 या 4?
3: 4।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: 4 या 5? 5।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: बिग 106.2. दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: बिग 106.2. That's my song by E and.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Yo, listen out there.

0: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक,
2: गुड आफ्टरनून, 1:05।
1: Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: द वेदर इज द मेन टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन आजकल। आज का क्या है हाल? हैवी रेन्स एक्सपेक्टेड इन फुजेरा, अलेन, रसल खेमा। अगर ऑलरेडी रेन हो रही है तो मुझे बताओ, व्हाट्सएप करो 0543091062। इट इज 42 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज अक्रॉस द UAE, ह्यूमिडिटी एट 55-60%।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस हे मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Homes R Us big deals are here. Save up to 90% off on furniture and home accessories. Best deals, biggest discounts. Hurry, only while stocks last. Exclusively at Homes R Us, Zabeel Furniture Mall, Ood Mehta.
4: Listen to her every day.
5: Mugambo, खुश हुआ।
6: एडवाइस एक ऐसी चीज है जितनी भी अच्छी हो लोग फ्री की चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बताओ मुझे ऑफिस में किसने आपको नाराज किया है?
7: सबने।
6: एक ही दिन में सबने? अरे रे रे रे, कोई बात नहीं, तब घर जाके गुस्सा मत निकालना। फिलहाल विल प्ले द 5 सेकंड रूल, इट्स अ फन गेम, यू गेट 5 सेकंड्स। इस वक्त अगर 3 चीजें आप अपने बॉस को बोल सकते हैं तो वो क्या बोलते हिदायत?
7: एक ही चीज।
6: थ्री थिंग्स दैट यू लव डूइंग ऑन वीकेंड्स।
7: वीकेंड मूवी, फ्रेंड्स,
6: बॉस। सो 3 चेंजेस यूल ब्रिंग टू योर वर्क प्लेस।
7: आई विल टर्मिनेट ऑल द एम्प्लॉइज एंड आई विल गिव द न्यू ओपनिंग एंड आई विल बी द वन।
6: Oh God!
2: 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
8: Hey, जल्दी उठा, तेरा खटा ना, चल हटा।
9: हाँ,
8: अरे जल्दी उठा, सुन ना।
10: ट्रैफिक कहीं पर नजर नहीं आ रहा, ट्रैफिक भी अभी लंच ब्रेक पर है, बट या हल्का फुल्का यू फाइंड 311 स्टिल हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा, उल्टी दिशा में, यानी कि ऑन शेख जायद रोड you'll find traffic Dubai Marina से निकल के going towards Umm Sikkim वाला area, यहाँ पर भी 3-4 मिनट की देर। In case you spot something, give me a call 800-1062 पर।
2: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. This is the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

फायदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। Big 106.2

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 2:06।
1: Bollywood.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 3:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। Big.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 4:06।
1: बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: काफी अनप्रेडिक्टेबिलिटी वेदर वाइज टिल टुमारो फ्राइडे, बिकॉज कहीं कहीं पर बारिश बहुत भारी हो रही है, कहीं कहीं पर कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। सो अले एंड रसल खेमा में आज बारिश के चांसेस, मूसलाधार वाली, एंड देन दुबई में एक्सपेक्टेड गो अप टू 45 डिग्रीज सेल्सियस। इट इज 50-60% ह्यूमिडिटी एज वेल ऑन दिस थर्सडे इवनिंग।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me।

दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. जितने भी लोगों ने कल मेरे पोल क्वेश्चन में लिखा था दैट दे वुड स्पेंड 8000 दिरहम्स ऑन अ स्टेन्ड शर्ट जस्ट बिकॉज इट इज प्राडा, प्लीज यार गिव मी अ ब्रेक. ओके, मुझे कभी भी लगता है कि खुराफात करने के लिए लोग कर देते हैं जस्ट यू नो कॉन्ट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू. सो या इफ यू हैवंट हर्ड दैट प्राडा हैज कम आउट विद 8000 दिरहम की एक शर्ट और उस पर जानबूझ के उन्होंने स्टेन्स लगाए हुए हैं. सो या इफ यू एंड आई काइंड ऑफ हमसे अगर चाय कॉफी गिर जाती है तो बस हो गई, खराब हो गई शर्ट, दैट्स इट, यू आर काइंड ऑफ थ्रो इट अवे, राइट? बट नो, नॉट इफ यू आर प्राडा. यू कैन देन मार्क इट अप बाय सेवरल थाउजेंड एंड सेल इट फॉर 8000 दिरहम्स. एंड देयर आर पीपल हु आर थिंकिंग यस, जस्ट बिकॉज प्राडा वी आर रेडी टू स्पेंड 8000 दिरहम्स फॉर अ शर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन 8000 दिरहम्स फॉर अ सॉइल्ड इंटेंशनली स्टेन्ड शर्ट. वाओ, मतलब अनबिलीवेबल. ये फैशन की दुनिया मुझे ना कभी समझ में आई है ना कभी समझ में आने वाली है. एक और चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड. दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड. गुड आफ्टरनून.

0: Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत, डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: This is The Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, this is the Big Thrill. And अगर मेरी तरह आज सुबह से आपको भी लग रहा है कि Friday क्यों नहीं आ पा रहा है इस हफ्ते, समझ नहीं आ रहा है मुझे. We'll all set to keep you company until 9 while you're out and about, stuck at the Sheikh Mohammed bin Zayed. हम यहाँ पे गाते हैं, माहौल बनाते हैं with the karaoke, the only platform for bathroom singers. गाना आए या ना आए, दिल का दर्द कानों तक पहुंचना बहुत जरूरी है. So if you enjoy singing, we'll be karaokeing in just a bit. Filal kick-starting the show with...

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग द टाइम राइट नाउ 5:08।
2: बॉलीवुड

0: maximum grey coverage, vibrant colour and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Colour. Made in Italy.
1: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली
3: है। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
4: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: 38 डिग्रीज है, गाड़ी में फिलहाल 45 दिखाएगा, लो जाएगा अराउंड 35, ह्यूमिडिटी 57% पर।
4: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

0: द बिग थ्रिल, 5:17 फिलहाल काफी मिनट लगने वाले हैं व्हाइल यू आर गेटिंग बैक होम. ट्रैफिक काफी है आज, बट ट्रैफिक में बैठे बैठे क्या करें, गाने गाते हैं. यू नो व्हाट, इज सच अ ग्रेट वे टू अनवाइंड. ऑफिस में अगर 50 मेल सीसी करी है तो बस दिल का जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी गुस्सा बॉस पे है, यहाँ अपनी आवाज में निकालो. आई एम जस्ट किडिंग, दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू. आप अपना कॉन्सर्ट होस्ट कर सकते हैं, ऑडियंस मेरी, आवाज आपकी, बस इतनी कोशिश करना कि ऑडियंस बरकरार रहे. इट्स टाइम फॉर द कारियोकी.
1: कारियोकी.
0: अब आज का जो गाना है, बिकॉज सलमान भाई इज ट्रेंडिंग अगेन एंड उन्होंने रिसेंटली बाबा संजू बाबा के लिए एक बड़ी अच्छी पोस्ट डाली थी, तो ये संजय दत्त का ही गाना है. एंड अकॉर्डिंग टू माई चैट जीपीटी, संजय दत्त का बहुत ही पॉपुलर गाना बैक फ्रॉम द 80s.

मुझे गाना इसलिए पता है कि मेरे घर में ना बड़ा कैरियोके होता है इंडिया में. एक अंकल है हमारी फैमिली में, वो हर दो गानों के बाद सिर्फ यही गाना गाना चाहते हैं और ऑफ कोर्स जब माहौल बनता है उसके बाद ही गाते हैं. तो अगर आपने गेस कर लिया ये गाना, व्हिच आई एम श्योर कर लिया होगा, एंड यू वांट टू सिंग, 800-1062 इज द नंबर टू डायल. इट्स टाइम फॉर द कैरियोके.

0: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।

0: आज का पावर टिप। अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से ही बनता है स्ट्रॉन्ग डे।
1: ताकत का तड़का विद डाबर शीलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001 हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, थर्सडे की शाम काश फ्राइडे की होती है। फिलहाल वी आर कैरियोकिंग। गाना आए आना आए, द ओनली प्लेटफॉर्म फॉर बाथरूम सिंगर्स। अपना टैलेंट बाथरूम तक नहीं, दुनिया तक पहुंचाओ। अब दुनिया का मुझे नहीं पता, बट शेखजाद रोड तक 100% पहुंचेगा। फिलहाल वी गॉट इमरान। हाय इमरान।
2: हाय, गुड इवनिंग मानसी, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड सर, आप कैसे हो? आज गर्मी ज्यादा लगी नहीं लगी?
2: बस ठीक था आज तो।
1: कल आपने एक वर्ड बोला था सर, वो मेरे जहन से जा नहीं रहा है, फ्रॉड डन। मैं अपनी चार दोस्तों को बोल चुकी हूँ फ्रॉड डन।
2: अच्छा, वो ना उसका भाई भी इधर ही होता है, उसने सुन नहीं लिया।
1: फिलहाल आज का जो गाना है आपने पहचान लिया है सर?
2: जी मैडम।
1: तो कल से अच्छा गाओगे कि कल जैसा गाओगे?
2: क्यों, कल अच्छा नहीं गाया था?
1: बहुत अच्छा गाया था। दो तीन लोगों का फोन आ गया था मुझे कि साइन करना है इमरान को, मतलब बहुत बिजी है साइड पे। चलो आज और अच्छा गाओ।
2: क्या ये ही प्यार है, बोलो ना।
1: हाँ, बोल रही है वो। आगे गा दो।
2: दिल तेरे भी कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या ये ही प्यार है? हाँ ये ही प्यार है।
1: मुझे एक बात बताओ, कैसे पता चलता है कि प्यार हो गया?
2: ये तो बस जब दिन अच्छा लगने लग जाता, टाइम अच्छा लगने लगता, खुश खुश होने लग जाता, बस प्यार हो गया।
1: हो रहे हो आजकल खुश खुश मुझे लग रहा है आप।
2: ओ, किधर खुश हो रहे हैं अभी? बॉस के जाके बॉस के जाके भी फेस देखना है, उसको अपडेट देनी है।
1: बट फिलहाल यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
2: थैंक यू, थैंक यू, थैंक
1: यू।
2: Bye-bye.
1: This is what we do every single evening while you're heading home. Like I say, गाना आए आना आए, गाना चाहिए। So अगर आप भी गुनगुनाना चाहते हैं, then 800-1062. You can also send me a WhatsApp 0543-091-062 पर।
0: Karaoke. Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: 5:42, keeping you company until 9. This is the Big Thrill. We are karaokeing. Filhal coming up.
1: Teri khair mang di, main mangana kuch aur ek teri khair mang di.
0: इसी के साथ एक ऐसी मूवी जिसका मिलेनियल्स बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं, मतलब हम में अपने अप्रेजल का इतना इंतजार नहीं है जितना इमरान हाशमी का इंतजार है.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसकी पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill. We are karaokeing while you're heading home. गाना गाते हैं, माहौल बनाते हैं. अगर आपको भी गाना गाने का शौक है, this is it. This is your platform. Right now joining us is Vicky. Good evening.
2: Good evening.
1: बस ये energy मुझे चाहिए आज, मुझे इतनी नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है. प्यार तो नहीं हो गया?
2: अच्छा, सच में? अरे कलाम खान बोल रहा कि यार आजकल नींद बड़ी आती है, कोई हमसे भी मोहब्बत करे नींद बहुत आती है यार.
1: कोई आजकल बहुत नींद आ रही है. फिलहाल हाउ इज योर डे विकी?
2: सुपर अमेजिंग.
1: वाओ, कैसा अमेजिंग, क्या हुआ है, जरा शेयर वन अमेजिंग थिंग दैट हैपेंड विद यू टुडे.
2: या लास्ट नाइट मेरा रूम चला गया ना, तो मैं गाड़ी में सोया. सो उसी रात के मीन जब नेक्स्ट डे हुआ, तो मुझे अपना पर्सनल रूम मिला. कोई बंदा नहीं मेरे साथ, अकेला बड़े रूम में.
1: तो ये मतलब किराया तो देना पड़ रहा होगा ना एक्स्ट्रा, क्या फ्री में मिल गया?
2: नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट.
1: ये कौन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रूम्स दे रहा है?
2: देख लो फिर मेरी
1: किस्मत. आपने बहुतों की नींद उड़ा रखी है मुझे लग रहा है. फिलहाल गाना पहचान लिया, नहीं पहचाना है?
2: जी जी पहचान.
1: चलो जी, आप सुनते हैं विकी की आवाज में.
2: क्या यही प्यार है,

0: नहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? क्या मतलब बहुत स्माइल करते हो, खुश रहते हो, दैट्स अमेजिंग।
1: आधे लोग मेरी हंसी के चक्कर में जो है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं। गॉड ब्लेस यू टू, थैंक यू सो मच।
0: मुझे तुमसे मोहब्बत है ना यार, ये किसने बोला?
1: मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? अगर तुम्हारी सच्ची होती तो मेरी नींद उड़ जानी चाहिए थी विक्की। बाय, कमाल गाया है। हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट इवनिंग। माहौल बनाने के लिए, इतना अच्छा गाना सुनाने के लिए, यू ड्राइव सेफ एंड एंजॉय योर फ्री का कमरा।
0: थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू,
1: थैंक यू विक्की, बाय। ये karaoke, अगर आप भी गाड़ी में बैठकर गुनगुनाना चाहते हैं, देन 800-1062 या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 0543091062 पर। Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:09।
2: बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hanji, ye hai Big Thrill, main hu Mansi. While we're playing the 5-second rule, something very, very important. Agar aajkal aap bhi bahut low feel karte hain, low on energy, low on confidence, aaj ke modern lifestyle mein, aisa feel hona is very, very common. There's so much stress, fast food hai, fast lifestyle hai, and all of this can contribute to us feeling very, very low. But you don't have to worry, I've got the perfect solution for you. Just have Dabur Shilajit capsules. They help increase your muscle strength, your stamina, and your power. Agar aap भी शेर की तरह मजबूत बनना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत कीजिए डाबर शिलाजीत के साथ. 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं दैट मेक यू फील स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट. आपकी जीत विद डाबर शिलाजीत. डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिंस और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. फिलहाल आई एम गोना टेक यू टू अर्ली नहीं लिल लेट 2000s. आई काइंड ऑफ लव दिस मूवी बट अगेन बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल ही मूवी कर नहीं पाई. सुखविंदर सिंह की आवाज. Remember Bhag Milkha Bhag? Right here on Big 106.2, keeping you company until 9, I'm Mansi. And while you're enjoying the music, do not forget to follow us on socials. 106.2 Big FM it is.

0: big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Great news, Ajman. A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward, plus exclusive member discounts. Safir Market. More choices, more savings, more reasons to shop.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. The Big Jill.
2: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: मिस्ड योर मॉर्निंग बज़.
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.
0: ये सर
5: नेशनल क्रश की जो उपाधि थी इससे पहले कि वो बनी थी, इट वाज नॉट इवन इन्वेंटेड, बट काजोल वाज दैट राइट आफ्टर डीडीएलजे. कुछ कुछ होता है. एंड देन लास्ट टाइम जो मैंने आपको एक मोंटाज ऑफ डायलॉग सुनाया था, वो कौन सी फिल्म का था?
6: That's from the iconic K3G, Khushi Begum.
5: Absolutely correct. And since I know that you're inside a bank, I'm going to give you a challenge before I give you this, these passes, okay? Ajay, what you got to do is, मैं आपको काजोल का एक आदत सुनाने वाला हूँ, okay? She can, okay. Only she can do this. Nobody else can, okay? इसको सुनिए and you have to repeat it, okay?
6: Okay.
5: Here goes.
6: Do you really want me to do that?
5: I really, really, from the bottom of my heart, want you to do this. On behalf of everybody who's got a credit card call from a bank, I want you to do this. Okay.
6: I just can't scream, otherwise everybody will look at me.
5: No, you have to. That's the whole challenge, bro. Thoda to mehnat karo, yaar. Ready? 3, 2, 1. Ajay, one more time. Go for it. Despite the fact that you're in a bank, I'm going to give you marks only for trying. जो participation certificate होता है ना स्कूल में मिलता था, सिर्फ वही आपको मिलने वाला है. नहीं, लेकिन साथ में दो open movie tickets as well. Ajay, you're a great sport. Thank you so much for taking part.
0: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
9: 38 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 34. काफी ह्यूमिड, फिलहाल ह्यूमिडिटी 63% पर.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, this is the Big Thrill of Mansi. We are playing the 5-second rule and joining us is Vinita, who's very, very excited because this is the first time she's got in touch. So, Vinita ke debut ke liye taliyan. Hi,
2: thank
1: Vinita.
2: Thank you. Hi.
1: So, what do you do, Vinita?
2: I'm a procurement officer.
1: समझ मुझे कुछ नहीं आया, मतलब अच्छा ही काम कर रही है विनीता, प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर. सो आर यू स्टिल ड्राइविंग बैक होम? देयर इज ट्रैफिक?
2: नॉट मच,
1: थोड़ा बहुत हमेशा
2: दुबई का कभी.
1: हाँ जी, चलो वी विल प्ले द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 सेकंड्स. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें आपने बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
0: 5 सेकंड रूल.
3: ओह या.
1: क्विकली नेम 3 क्वालिटीज इन अ कॉलीग दैट यू फाइंड वेरी वेरी अनअट्रैक्टिव.
2: Unattractive.
1: हाँ.
2: Not cute. झूठ बोलना.
1: एक सेकंड. टाइम खत्म हो गया.
2: किसी से बुराई करना.
1: टाइम खत्म हो गया. Not cute का मतलब क्या होता है? आपके ऑफिस में क्यूट लड़के नहीं है?
2: है, तभी तो बोल रही हूँ जो नहीं चाहिए क्वालिटीज.
1: अगर विनीता एचआर हो और मैं एचआर हूँ, आई स्वर मैं खुद को भी इसमें रख रही हूँ, हम सिर्फ जो है गुड लुक्स, बाकी हमें सीवी देखना ही नहीं है. मूविंग ऑन. नेम 3 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनका नाम एम से शुरू होता है.
2: मोनिश बहल.
1: ये देखो, 4.5 सेकंड के बाद विनीता ने ढूंढा है किसे, मोनिश बहल को.
2: एम से जल्दी में कुछ नहीं मिला, वही याद आया मुझे विवाह मूवी से.
1: 3 ऐसी चीजें जो राइस से बनती हैं.
2: बिरयानी
1: और
2: प्लेन राइस. जीरा राइस.
1: वेरी गुड, ऑलमोस्ट देयर. 3 चीजें जो आपको सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पे मिलती हैं.
2: ट्रॉली
1: और
2: प्लेन
1: है. अच्छा हाँ.
2: और एयर हॉस्टेस.
1: नेम 3 संजय दत्त की मूवीज. संजय दत्त क्यूट है? नहीं है
2: ना.
1: हो
2: पैसा है मूवीज में.
1: 3 ऐसी चीजें विनीता जो आपको अपने मैनेजर के बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है.
2: घुमा घुमा के बातें पूछता है. एक बार बार बार पूछता.
1: हाँ.
2: काम कर चुके हैं, फिर से बोलेगा वही काम करो.
1: वेरी नाइस.
2: अरे बंदे दे दिया यार.
0: 5 सेकंड रूल.
3: ओह या.
1: दुनिया में ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसे परफेक्ट मैनेजर मिला है, बट विनीता बहुत खराब खेला है.
2: मैंने कभी ट्राई नहीं किया एफएम पे बात करने के लिए. ये मेरा फर्स्ट टाइम था एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ट्राई किया.
1: No, I am very, very glad that you called.
2: Thank you so much. Bye.
1: जैसा मैंने कहा, sounds very, very easy जब आप गाड़ी में होते हो, बट इतना आसान है नहीं. अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, then it's a toll-free number 800-1062.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Insurers market dot AE. Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ae.
2: Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
2: Yeah, right.
3: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
2: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
2: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
4: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत, डाबर शिलाजीत. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
5: Big Traffic, अगर आप फर्स्ट अलखेल पे हैं, इनफैक्ट मनारा स्ट्रीट ऑल्सो एट द मोमेंट इट इज पैक्ड. 15 से 20 मिनट का डिले. ट्रैफिक चलिंग वेरी वेरी स्लो. इफ यू टेकिंग द शेख मोहम्मद बिन जायद राइट नाउ, इट इज अ 27 मिनट डिले. देयर इज स्टिल स्लो मूविंग ट्रैफिक ऑन शेख जायद. 33 मिनट दिखा रहा है, बट ये 40 हो जाएगा. इसके अलावा कहीं अटके हैं बताइए 800-1062 पर.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हांजी, ये है बिग थ्रिल मानसी एंड वी आर ऑल वेरी थ्रिल्ड। अब मैं बात कर रही हूँ मिलेनियल्स की। आवारापन 2 का ट्रेलर आ चुका है एंड विद इन 9 आवर्स ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन व्यूज एंड ट्रेंडिंग नंबर 1।
2: क्या तड़प है ये, कैसी सजा,
3: कितनी हसीन शक्ल है, मौत से मिलने का शौक है तुम्हें।
1: शबाना जी इज लुकिंग अमेजिंग।
4: मौत, मेरा उससे एक पुराना रिश्ता
1: है,
4: एक कर्ज है।
1: बिना शर्ट के इमरान हाशमी और क्या चाहिए 2026 में ट्रेलर आ चुका है। 14 अगस्त को मूवी रिलीज होने वाली है एंड यू नो आई वॉच दीज ट्रेलर्स ओनली फॉर द कमेंट्स। अब इतने कमाल लोग क्रिएटिव कमेंट्स करते हैं। किसी ने लिखा है कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ, विच इज ट्रू। A movie? No, this is an emotion. We are not Insta kids. This man and his movie made our childhood beautiful. Definitely a millennial. This movie can eat 100 sayara. The OG man is back and I totally agree. I think, can't wait yaar. Matlab, bade zamane baad kisi movie ko first day, first show dekhne ka dil kar raha hai. And that is Awarapan 2 trailer aa chuka hai. Go and check it out.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun.
1: Come on, come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
2: Good evening, yeah, Big Thrill and Mansi. As a person who highly depends on ChatGPT, मैं कभी इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती हूँ. एक ऑफिस है जिसके HR की ये ईमेल वायरल हो रही है. HR ने अपने एम्प्लॉयज को कहा है, प्लीज डोंट ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट ChatGPT का रिस्पॉन्स इन टू क्लाइंट ईमेल्स इफ इट इंक्लूड्स द फ्रेज एज एन AI लैंग्वेज मॉडल, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू. ऑनेस्टली हर ऑफिस के कुछ बहुत फनी डूज एंड डोंट्स होते हैं, बट ये बहुत डिफिकल्ट है टू इम्प्लीमेंट. इमेजिन अ लाइफ विदाउट ChatGPT. ChatGPT हमारी मदद के लिए, उसे प्रॉम्प्ट दो, वो ईमेल लिखे, फिर उसे ह्यूमनाइज करो. इट इज़ वेरी वेरी हार्ड. आपके ऑफिस में ऐसे कौन से वियर्ड रूल्स हैं? प्लस मुझे बताओ कि आप अपने कितने ईमेल्स के लिए ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं. Right here on Big 106.2, kick starting this hour with

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:08।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Can't wait for the weekend because officially on OTT release hogi. Main wapas aaunga. You know that I wanted to see this movie in the theater. This is my kind of movie. It has Naseer Sahab. I'm such a big fan. Unfortunately, मैं देख नहीं पाई इम्तियाज अली की movie theater में. And finally, इस weekend मेरा plan है to watch this movie. वैसे movie से याद आया, I'm going to take you back to 2010. आज ही के दिन ये movie release हुई थी. Unfortunately, ये movie मैंने देखी नहीं. It's a cult classic, especially for girls who are from South Delhi. उन्हें ये movie बहुत अच्छी लगी थी. South Delhi की ही लड़की की एक कहानी है. She's rich, she's into fashion, and she's this overly enthusiastic socialite, जिसे लगता है कि she's God gifted in matchmaking. And इस चक्कर में ये नए नए project उठाती है. And एक ऐसा project होता है, this girl from small town, जिसका वो makeover करती है, उसे South Delhi type बनाती है. And इन सब के चक्करों में बहुत chaos होता है, बहुत सारे दिल टूटते हैं. Pinterest से पहले इस movie ने फैशन इंस्पिरेशन दी थी लड़कियों को 2010 में. आई थिंक अ लॉट ऑफ अस हु नॉट फ्रॉम साउथ दिल्ली, वी डिडंट इवन नो अबाउट द ब्रांड्स जो इस मूवी ने दिखाए थे. रिया कपूर का ये डेब्यू था एज अ प्रोड्यूसर, अगर आपको याद आ गया है द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इनफैक्ट अमित त्रिवेदी का माइंड ब्लोइंग म्यूजिक था एंड वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स आई हैव टू से 2010 की. अगर आपको याद आ गया है, इफ यू सीन द मूवी, let me know. मैंने ये मूवी आई डोंट नो वाई देखी, क्यों नहीं, कितनी बार मैंने शुरू की, बट आई नेवर कुड वॉच दिस मूवी. सो आई थिंक हाई टाइम फॉर मी टू वॉच दिस मूवी, क्योंकि ये आज ही के दिन 2010 में रिलीज हुई थी. फॉर ऑल दोज हू गेस्ड द मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट, अभय देओल, सोनम कपूर, दैट्स इट. 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

0: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
2: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
3: Insuremarket.ae. What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. Insuremarket.ae.
4: कहते हैं ना, Try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
5: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: All right, still patchy. अगर आप शेख मोहम्मद बिन ज़ायद में हैं, मोरिफ टू मुहेसना 29 मिनट डिले है. हैवी ट्रैफिक नियर फेस्टिवल सिटी, सिटी सेंटर डेरा के पास, तो इट इज बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल. ट्रैफिक ने करामा उदमै था, स्टिल वेरी स्लो मूविंग. इसके अलावा मनारा स्ट्रीट पे भी इस वक्त 12 से 15 मिनट का डिले. एंड पैची ट्रैफिक नियर DIFC, इफ यू आर टेकिंग शेख ज़ायद, इट इज 18 मिनट का डिले जो दिखा रहा है. इसके अलावा कहीं अटके हैं आप, एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट, बता सकते हैं 800-1062 पर.
7: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, yeah, Big Thrill of Mansi. While enjoying the music, if you're spending too much time scrolling to find the right rental car, then you have to meet Sia, Self Drive's AI car rental assistant. Just aapne apna budget type karna hai. क्या कार चाहिए, द टाइप ऑफ कार दैट यू वांट, एनी अदर प्रेफरेंस, एंड सिया विल इंस्टेंटली रेकमेंड द राइट गाड़ी फॉर यू. नो वेस्टिंग टाइम, नो एंडलेस स्क्रोलिंग, जस्ट वेरी वेरी इजी बुकिंग प्रोसेस विद सिया, जो आपको हेल्प करेगी. सो आज ही विजिट कीजिए selfdrive.ae.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Good evening, Thursday ki shaam, ek din aur baki, phir finally aayega weekend. Waise we're talking about this cult classic jo aaj hi ke din release hui thi 2010 mein. A typical chick flick, girls love this movie and I still haven't seen the movie. Riya Kapoor ka production debut hua tha iske saath. And of course, a movie that gave us all fashion goals, the brands we couldn't pronounce, we didn't know, and some of us, I'm including myself, still can't afford. Humne is movie mein dekhe the.
2: कैसी अलग दी कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनु छड़े.
1: Typical South Delhi socialite vibes. One thing that I still remember about this movie was a beetle, a yellow color ki gaadi jo सोनम कपूर हु वॉज द लीड उसकी थी. आई एम गेसिंग इट वॉज अ बीटल, बट एक येलो कलर की क्यूट सी छोटी सी गाड़ी थी. तो मुझे आज भी याद है ट्रेलर में मैंने वो गाड़ी देखी थी एंड आज भी सपना है कि वो गाड़ी लेनी है. अगर आपने गेस कर लिया द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: हे.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, welcome to the last of the show and we're discussing do's and don'ts. अब ये don't जो है HR का जो email है ये viral हो रहा है. HR ने अपने employees को कहा है कि please don't copy paste email drafts from ChatGPT और AI. थोड़ा उसको humanize करो. ऐसा लगता है कि वहाँ लिखा और यहाँ भेज दिया. अब मेरा question ये है कि ChatGPT is there to help us draft emails, तो क्यों ना use करें उसे. एंड आप किस बहुत ही फालतू चीज़ के लिए चैट जी पी टी यूज़ करते हैं. आई स्टिल प्रोमिस यू यू कांट बीट मी, क्योंकि मैं तो चैट जी पी टी से बड़े और छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हूँ. ऑल्सो वी डिस्कसिंग दुबई's लेटेस्ट आर टी ए रोड अपग्रेड्स विद सम फैंटास्टिक म्यूजिक किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: 105.2, the beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 37 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 35, ह्यूमिडिटी फिलहाल 62% पर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me।

0: holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, यह है Big Thrill Mansi and हर ऑफिस के कुछ funny do's and don'ts होते हैं. This don't is getting a lot of publicity on social media. So HR ने अपने employees को कहा है, please don't blindly copy paste ChatGPT's response into client emails. A strict action will be taken. Please humanize your emails to clients. Right now joining us is Gauri, who's had a very very long week, है ना?
3: Yeah.
2: So Gauri, what do you do?
3: I am into marketing.
2: Very nice. How often do you use ChatGPT for work?
3: We are mostly asked to use Copilot than ChatGPT.
2: But you use AI, right? For drafting emails and all?
3: Yeah.
2: आपके ऑफिस में अगर ऐसा रूल आ गया गौरी कि यू कांट यूज ChatGPT का कॉपी पेस्ट रिस्पॉन्स इन टू अ क्लाइंट्स ईमेल फिर?
3: Oh my god, but it's the opposite for me. They ask us to integrate more AI into our work.
2: What is the weirdest thing that you've used ChatGPT for?
3: I use it for almost everything.
2: Me too, like, me too. The weirdest thing.
3: I don't know, like this one time I was using air fryer for the first time and then it was undercooked. So I was like, okay, how much more time should I cook for? Just to complete air frying while I was doing it.
2: You are so much better than I am. मेरे ChatGPT से तो मैं क्या क्या पूछती हूँ. अगर किसी ने एक दिन देख लिया ना, मुझे सीधा थेरेपी पे भेजेगा. वो बोलेगा इसको थेरेपी की जरूरत है, ChatGPT की नहीं. बट आई हैव टू से वेरी वेरी हेल्पफुल. मतलब डीवा का बिल मेरा जो है बहुत आ रहा था, ChatGPT रेस्क्यूड मी. तो उसने मुझे सोल्यूशन दिए. तो हर चीज़ बताता है, फ्रॉम माई बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम्स टू माई बिल प्रॉब्लम्स. आई कांट एक्चुअली ड्राफ्ट ई मेल विदाउट ChatGPT. मैं बहुत ही खराब हो चुकी हूँ. बट थैंक यू सो मच गौरी, यू हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट इवनिंग. वन मोर डे टू गो एंड फाइनली नो यूजिंग ChatGPT फॉर ई मेल्स ओवर द वीकेंड. हैव अ लॉट ऑफ फन.
3: यू टू, बाय.

0: सपना है मेरा एक बार फारा खान के घर की पार्टी में जाना। पहले करण जौहर का हुआ करता था, बट आफ्टर आई सॉ द सेलिब्रेशन दैट शी डिड फॉर द लॉकअप कंटेस्टेंट्स, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ फारा खान गैंग।
1: द बिग थ्रिल विद नॉन्सी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: For all those who've not seen Lock Up, you'll not get the reference. But when I saw Shreya Kalra and Shivangi Joshi dancing yesterday, मुझे से लग रहा था मुझे trauma देखकर ये दोस्त बन गए हैं। जिन्होंने देखा है वो समझ गए होंगे। फिलहाल एक चीज़ है जो बड़े काम आएगी आपकी आज के modern lifestyle में। अगर आप weak feel करते हैं, कमजोर feel करते हैं, it's very very common, stress है, fast food है, बड़ी fast lifestyle है, and all of this can make us feel low. But you don't have to worry. Have Shilajit capsules. I'm talking about the Dabur Shilajit capsules. They help increase your muscle strength, your stamina and your power. अगर आप भी शेर की तरह मजबूत बनना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत कीजिए डाबर शिलाजीत के साथ। They are absolutely natural, 100% natural हैं, आयुर्वेदिक supplements हैं, and they will make you feel more confident, very very strong. आपकी जीत डाबर शिलाजीत के साथ। Definitely consult a doctor before taking any medicine or pharmaceutical products.

0: हाय, मुझे तो बहुत याद आ रही है लॉकअप की। मेरा प्लान होता था यहाँ से जाने के बाद लॉकअप पे कलेश देखना। कल जो है ये शो फिनिश हो चुका है। पीपल हु लव रियलिटी टीवी, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन द शो। श्रेया कालरा जीत भी गई है, द गर्ल आई वाज रूटिंग फॉर। बट अगर आप रियलिटी शोज देखते हो ना, तो उनके विड्रॉल्स होते हैं फॉर रियल।
1: तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी रात।
0: मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जिससे घर जाके मैं गप्पे मार सकती हूँ। मैं क्या देखूंगी? आई हैव टू स्टार्ट वॉचिंग अलायंस। आई थिंक मैंने दो चार एपिसोड देखे एंड फिर आई गॉट टू मच इनटू लॉकअप बिकॉज दैट वाज मोर ऑफ माय वाइब। बट आई थिंक आई विल स्टार्ट री वॉचिंग अलायंस फ्रॉम टुडे। इफ यू हैव एनी अदर रियलिटी शो विच इज अवेलेबल जो मैं देख सकती हूँ, मुझे बताना। फिलहाल वी गॉट दिस वन कमिंग अप। इसी के साथ
2: दिल पे वो खाई मजा आ गया।
0: राहत साहब की आवाज आफ्टर अ लॉन्ग डे राहत देने के लिए। अप नेक्स्ट।
3: मेरे बॉयफ्रेंड से वुलू वुलू करेगी तो धोपेंगी ना उसको।
4: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
5: इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए। The worst part of a small accident isn't the dent, it's what can happen after. But with us, you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae.
4: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
6: Kehte hai na, try and try till you succeed. Haar na maan mere sher. मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
7: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
8: नहीं, ये तो मुफ्त है।
7: गुड, चलो फोन लगाओ।
4: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And इसी के साथ finally Thursday समाप्त. Friday ना बड़ा दूर लग रहा है अभी भी. ये हफ्ता एक महीने जैसा लगा है मुझे. I don't know, is it just me or it's everyone? फिलहाल कल weekend है. We'll bring in the weekend together. Until then, do not forget to follow us on socials. 106.2 Big FM. It is. And you can say hi to me, Mansi talking. आजकल जो है लोग दो टीम में डिवाइड हो चुके हैं मेरे इंस्टाग्राम में, क्योंकि मैंने रियलिटी शो लॉकअप पे एक रील बनाई जिसमें मैं टीम श्रेया कालरा को सपोर्ट कर रही हूँ, एंड जो बाकी के कंटेस्टेंट्स हैं उनके फैन ग्रुप्स आर अटैकिंग मी. इफ यू आर वॉचिंग द शो, इन फैक्ट अब तो शो खत्म हो गया, इफ यू डिड वॉच द शो, ये होता है फैन क्लब्स एक दूसरे को अटैक करते हैं उन कॉमेंट्स. बट मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ रही है, मेरा फायदा है. फिलहाल जाते जाते मैं लीव यू विद द सॉन्ग आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद फ्रॉम कॉकटेल टू, उसके बाद विद बिग चिल. योर टाइम टू चिल, योर टाइम टू रिलैक्स विद सम फैंटास्टिक म्यूजिक. स्टे राइट हियर, आई विल सी यू टुमारो. गुड नाइट.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज।

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae
1: insurancemarket.ae
0: नो रश नो नॉइस जस्ट सोल सूथिंग म्यूजिक ऑन अ मूनलिट राइड दिस इज द बिग जेल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग थ्रिल विद मानसी weekdays 5 PM to 9 PM on Big 106.2 brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit. Big 106.2

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। द बिग जेल brought to you by insurancemarket.ae for the best insurance deals in the UAE. Call 800-ALFRED-247. Aap sun rahe hain Big 106.2 The Beat of Bollywood.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द नाइट शिफ्ट द बिगेस्ट बॉलीवुड हिट्स नॉन स्टॉप बिग 106.2 द बीट ऑफ